गया मैं क्या लौंगे मैं क्या गया दूर दूर गया मैं क्या लौंगे मैं क्या गया दूर दूर गया मैं क्या लौंगे मैं क्या गया दूर दूर गया मैं क्या